आपने एंजॉय किया ये गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पंडित पता नाइट्स एंड रैली दरम और चैपल हिल सहित पूरे ट्रायंगल क्षेत्र में गाड़ियों के शीशे तोड़कर चोरी करना, ये घटनाओं में अचानक भारी बढ़ोतरी देखी गई है। हाल ही में एक वीकेंड पर चैपल हिल में 14 गाड़ियां और दरम के एक होटल के बाहर 13 गाड़ियां निशाना बनाई गई। वहीं रैली के ब्रियर क्रीक स्थित प्लैनेट फिटनेस के बाहर पिछले 2 हफ्तों में 2 बार गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है। इस चोरी के मामले को कंट्रोल कैसे करें ये प्रशासन सोच रही है एंड मतलब जो गश्त है वो भी बढ़ा दी है। आपको अपने व्हीकल का अपने आप से ख्याल रखना है क्योंकि व्हीकल एक ऐसी चीज़ है जो मतलब मैं क्या कहूँ, बहुत सारे ड्रीम रहते हैं इसके पीछे, बहुत सारी मेहनत होती है, उसके बाद सब लोग व्हीकल जो है वो परचेस करते हैं एंड उसके बाद अगर ऐसी घटनाएँ होती है

आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए।

इंजॉय किया आपने गाना जिसने सेट कर रखी है आज की वाइब। सेंट्रल नॉर्थ कैरोलिना में जो है वो भीषण गर्मी और उमस का दौर जारी है। तापमान 80 डिग्री फॉरेनहाइट के ऊपरी स्तर से लेकर 90 डिग्री फॉरेनहाइट के निचले स्तर पर लगभग 32 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जिसके साथ ही दोपहर और शाम के समय छिटपुट बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को अत्यधिक गर्मी से बचने की सलाह दी है एंड इस भीषण गर्मी में आपको पानी जो है वो भरपूर मात्रा में पीना है, हाइड्रेटेड रहना है, सबसे ज़्यादा अच्छा अच्छा फूड खाना है, जंक फूड को अवॉइड करना है, हेल्दी फूड खाना बहुत ज़रूरी है एंड फूड ऐसा चुने जैसे फ्रूट एंड पानी का इनटेक बहुत ज़्यादा मात्रा में फूड में रहे, ऐसे फूड आपको चूज़ करना है। इस गर्मी में आपका ख्याल आपको रखना है क्योंकि गर्मी और उमस का ये मौसम क्या ही बताऊँ मैं कैसे होता है ना। एंजॉय करते हैं इस गर्मी के मौसम में ये बहुत अच्छा गाना जो कुछ ना कुछ राहत तो देगा।

मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी गाना आपको याद होगा। मतलब इस गाने के बाद तो ऐसा ट्रेंड सेट हो गया था कि हीरोज में भी केमिस्ट्री होती है, जैसे सैफ अली खान नवाब एंड खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय कुमार, इनकी केमिस्ट्री हमने देखी थी। हैवान फिल्म से 18 साल बाद साथ लौटे अक्षय कुमार और सैफ अली खान। जी हाँ, बॉलीवुड के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, सुपर खिलाड़ी अक्षय कुमार एंड सैफ अली खान पूरे 18 साल बाद एक बार एक साथ हमें नज़र आने वाले हैं। दोनों अपनी नई थ्रिलर फिल्म हैवान के साथ वापस आ रहे हैं। मेकर्स ने इस फिल्म के नए जो चीज़ें हैं वो जारी की है और कल 12 अगस्त को इसका पहला टीज़र जो है वो रिलीज़ किया जाएगा। इसके अलावा अक्षय कुमार 23 अगस्त से लंदन में अपनी एक और एलियन थ्रिलर फिल्म सामूक की शूटिंग भी शुरू करने वाले हैं। अक्षय कुमार इज अक्षय कुमार। मैं फिल्में करता रहूँगा एंड करता रहूँगा।

एंड मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि ये मत खाओ वो मत खाओ, लेकिन क्या आपको पता है कि समोसे और पराठे खाकर भी 68 की उम्र में भी आप फिट लग सकते हो। यही खबर है। दिग्गज अभिनेता सनी देओल इस समय अपने आने वाली जो फिल्म है बंटवारा 1947 की तैयारियों में बिजी है, जो आई गेस 14 अगस्त को रिलीज होने जा रही है। हाल ही में एक इंटरव्यू में 68 ईयर ओल्ड सनी देओल ने अपनी फिटनेस को लेकर एक मज़ेदार खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वो सुबह सूरज उगने से पहले उठते हैं, कार्डियो और वेट ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन वो कोई सख्त डाइट फॉलो नहीं करते। उन्होंने हंसते हुए कहा कि आज भी वो देसी घी के पराठे और समोसे मज़े से खा लेते हैं और यही इनके सीक्रेट का राज है। और इन्होंने ये भी कहा कि ये खाना खाकर ही ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है, और कैसे उठता है वो कभी बताते नहीं है क्योंकि

0: gonna run the race like me.
1: And सीने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन दैट इज CINTAA के अंदर इस समय बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कमेटी के 11 सदस्यों में अचानक अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद ये कमेटी भंग हो गई है। एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी उपासना सिंह ने ये बताया कि पुष्टि की है उन्होंने कि इस्तीफा देने वाले सदस्यों ने सीनियर एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरे और पूनम ढिल्लो के काम करने के तौर तरीके पर बहुत गंभीर आरोप लगाया है। मतलब ये आजकल चल रहा है फिल्म जगत में। और उसके बाद बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने एक बार फिर अपने बेबाक बयां को लेकर चर्चा में है। देश में चल रहे कुछ छात्र प्रदर्शनों पर जब दिग्गज अभिनेता नसरुद्दीन शाह ने बॉलीवुड की चुप्पी पर सवाल उठाए तो कंगना ने उन पर निशाना साधा। कंगना ने पीयूष मिश्रा के बयान का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, खाते तो इस देश का है लेकिन लड़ते पड़ोसी देश के लिए है। कंगना का ये बयान इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है। अच्छा है,

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड घड़ी की सुइयां रात के ठीक 9 बजा रही है। बाहर मंगलवार की ये रात अब काम और हसीन हो रही है। अब समय हो गया है हमारे पूरे शो के सबसे पसंदीदा और खास सेगमेंट का, यानी आज की एक बिल्कुल नई और ट्रू कहानी का सफर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इतिहास के पन्नों से हमारे इसी नॉर्थ कैरोलिना तट के पास की एक ट्रू कहानी और मिस्टीरियस घटना सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पिछले बार भी मैंने आपको एक घटना सुनाई थी एंड उसके बाद आज ये एक सच्ची घटना जो है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड कैसे चल रही है आपकी शाम। कहानी शुरू करता हूँ एंड कहानी शुरू करने से पहले बस एक गाना पहले आप सुन लीजिए एंड उसके बाद वी विल।

नहीं गाना, मैं आप सभी का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा एंड जल्द से जल्द कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है साल 1938 की, जब एसएस पुलास्की नाम का एक बहुत ही आलीशान और भव्य स्टीमशिप नॉर्थ कैरोलिना के तट के पास समुद्र में एक भयानक ब्लास्ट के बाद डूब गया था। इस जहाज को उस दौर का टाइटैनिक कहा जाता था क्योंकि इसमें अमेरिका के सबसे अमीर बिजनेसमैन, बड़े राजनेता और उनके परिवार सफ़र कर रहे थे। जब ये जहाज डूबा तो इसके साथ ही उस दौर के करोड़ों रुपए के सोनी और चांदी के जो जेवरात है, बहुत सारा गोल्ड एंड सिल्वर है, समुद्र के गहराइयों में दफन हो गए। मतलब आप सोच सकते हैं कि वो जमाना, दैट इज 1838 में, करोड़ों की जो ये थी लाइक दौलत थी वो समंदर के गहराइयों में दफन हो गई। कैन यू इमेजिन कि वो टाइम में इतने पैसे कितने हुआ करते थे, है ना। तो बाद में क्या हुआ जरूर सुनाऊंगा आपको।

0: Not every restaurant becomes an experience, but Soul Flavorscape of India is a journey through taste, tradition, and unforgettable flavors.
1: From crispy Delhi-style aloo tikki chaat, flavorful samosa chaat, to the signature Soul Dal Bukhara.
0: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven-fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
1: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering, or family celebration?
0: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
1: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
0: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरी डे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करे 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

यस, तो आखिरी मोड़ कहानी का ये था कि बहुत सारे करोड़ों रुपए के जो दौलत है वो समंदर के गहराइयों में दफन हो गई थी। लगभग 180 साल तक ये जहाज समंदर के सीने में छिपा रहा और लोग इसे एक मनगढ़ंत कहानी मानने लगे थे। लेकिन कुछ समय पहले गहरे समंदर में खोज करने वाली एक रेस्क्यू टीम ने नॉर्थ कैरोलिना के तट से करीब 40 मील दूर इस जहाज के मलबे को ढूंढ निकाला। जब गोताखोर समंदर की 100 फीट की गहराई में उतरे तो उन्हें रेत के नीचे दबे हुए 1813 के दशक के सोने के एंड चांदी के जो है वो सिक्के मिले एंड बहुत कीमती घड़ियां, बेहद कीमती आभूषण मिले जिनकी कीमत आज के दौर में अरबों रुपए में है।

आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

कैन यू इमेजिन कि 180 साल बाद भी कोई चीज़ अगर खोई है तो मिल जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास कभी मिटता नहीं है, वो सिर्फ सही समय पर सामने आने का इंतज़ार करता है। समंदर की गहराओं में दफन ये खजाना आज भी हमें याद दिलाता है कि इंसान की बनाई बड़ी से बड़ी आलीशान चीज़ भी कुदरत के सामने कितनी छोटी है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि नेचर इज़ द बिग पावर, नेचर एंड यूनिवर्स के मुकाबले कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ कि नेचर का ख्याल रखो तो नेचर आपका ख्याल ज़रूर रखेगा। तो कहानी कैसी लगी आपको? लास्ट टाइम की कहानी आई नो थोड़ा बहुत ज़्यादा सस्पेंस वाली थी एंड उसे एलियन तक लोगों ने जोड़ा था। होती है चीज़ें, यू नो, लाइक अब ये कहानी तो साबित करती है कि ये कोई भी मनगढ़ंत कहानी नहीं थी, ये कहानी हकीकत में हुई थी, लाइक ये घटना घटी थी। दैट्स व्हाई कि लोगों को ये चीज़ें मिल रही है और वो चीज़ों की

कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? आपको प्लीज़ मुझे बताना है एंड क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन कर सकता हूँ ये भी आपको सजेस्ट करनी है। तो वक्त हो चुका है आपको कुछ शेर सुनाने का। कहानी के बाद तो शेर का सेगमेंट आता है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। तो शेर पेश करने जा रहा हूँ। वक्त के साथ बदल जाना ही जिंदगी की रीत है मेरे यार। वक्त के साथ ही बदल जाना ही जिंदगी की रीत है मेरे यार। पुरानी बातों को पकड़ कर बैठोगे तो सफ़र भारी हो जाएगा। सही है ना यार, बहुत लोग पुरानी यादों को पास में जीते हैं। तो कह रहा हूँ, पुरानी बातों को पकड़ कर बैठोगे तो सफ़र भारी हो जाएगा। हर शाम एक नई कहानी है और नया एहसास लेकर आती है, है ना? हर शाम एक नई कहानी और नया एहसास लेकर आती है। आप स्माइल कर गले लगाओ इसे तो कल का सवेरा और भी बेहतरीन हो जाता है। इसलिए हमेशा कहता हूँ कि पास में नहीं रहना है, प्रेजेंट में रहना है एंड फ्यूचर के बारे में

रॉबर्ट वन ऑन नाइट्स एंड मैं हूँ सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है आरजे पराग। 7 से 10 में रहता हूँ आपके साथ, मिटाता हूँ आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूँ आपके मूड को रिफ्रेश। कैसे चल रही है आपकी ये ट्यूसडे की इवनिंग? कल है वेनसडे यानी हम डे का तो वीकेंड से भी ज़्यादा इंतज़ार बहुत सारे लोग करते हैं। हम डे के भी बहुत सारे फ़ैन मैंने देखे हैं। तो 7 से 10 का ये टाइम आप लोगों के साथ बात करते करते कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। एंड थैंक यू सो मच रेडियो नायरा निर्वाणा नाइट्स को इतना सारा प्यार देने के लिए। आप हमारे इस रेडियो नायरा के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर से। आपको कुछ नहीं करना है, बस टाइप करना है सिंपली रेडियो नायरा, आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मिलने के बाद आप एंजॉय कर सकते हैं हमारे आरजेस के एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज, एंजॉय कर सकते हैं आप लोग अनलिमिटेड म्यूजिक दुनिया के देश के किसी भी कोने में, बस आपका नेटवर्क जो है अच्छा होना चाहिए। तो चलिए कल मिलूंगा आपसे सेम टाइम पर सेम शो पर, तब तक के लिए।

जल चली है, दिल की हालत संभल चली है, अब जुनून हद से बढ़ चला है।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

GMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

रेडियो सिटी पर सुनिए द हम्मा सॉन्ग, संग बाय जुबिन नौटियाल, शाशा तिरुपति, कंपोज बाय ए आर रहमान, रिक्रिएटेड बाय बादशाह एंड तनिष्क, एंड रिटन बाय महबूब।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4 1490 एएम पक्का देसी पक्का लोकल।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

अब सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

ಸುದ್ದ ರಹಿ ರೇಡಿಯೋ ನಾರಾ 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM ಪಕ್ಕಾ ದೇಸಿ ಪಕ್ಕಾ ಲೋಕಲ್.

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

0: हेल्दी लिविंग मीन्स इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: Shopping for your next car? LeafCars.com puts everything in one place so you can search, compare, and buy with confidence. Choose from thousands of new and used vehicles backed by our trusted network of local dealerships. With expert service, convenient locations, and flexible buying options, LeafCars.com makes the entire process simple. Start online and drive home with peace of mind.
2: Do you desire for it's contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna and Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 karat gold and 18 karat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest free financing available. Come, see us for all your jewelry needs at Khanna and Sons Jewelers in Cary, North Carolina. Or call us at 919-388-3838.
3: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रचा बंडा एक बार आए
4: पक्का देसी पक्का लोका.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
1: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering or family celebration?
0: Ask about customized catering menus at reasonable prices. Crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
1: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
0: Whether it's dinner with family, chai with friends or your next big event.
2: Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors. Experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
3: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करे 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.
4: 101.9 FM, 99.9 FM, SD44 1090 AM. पक्का देसी, पक्का लोकल.

तार है इंडिया से, यारी है मशीन से, उड़े चाहे आसमां में, दिल है जमीन पे।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 एफएम, 99.9 एफएम, SD4, 1490 एएम, पक्का देसी पक्का लोकल। नायरा 101.9 एफएम, 99.9 एफएम, SD4, 1490 एएम, पक्का देसी पक्का लोकल।

GMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14

ಸುನ್ನತ ರಹಿಯೇ ರೇಡಿಯೋ ನಾರಾ 101.9 FM 99.9 FM SD4 4090 AM ಪಕ್ಕಾ ದೇಸಿ ಪಕ್ಕಾ ಲೋಕಲ್.

0: सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
0: 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: हेल्दी लिविंग मीट्स इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: Radio Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka Desi, Pakka Local.

Good morning. Hello. Hi. Namaste. I am back on 101.9 FM, 99.9 FM SD4 for 90 AM and 99.9 FM SD3 for Telugu. Naira se main hu aapki apni Monica aur aap sun rahe hain Triangle Loons and Talk. Well, good morning. Morning kaise ho? Aur wahi apna purana routine shuru hai. Ghar se office, travel, work aur bhai kaam ka tension. But thinking not, aapke day ko relaxing banane ke liye main aapko Triangle ki special masaledar khabrein sunane wali hu. Aur obviously masti to continue chalte rehne wali hai. Waise abhi tak ढेर सारी गपशप चल रही थी आपकी हमारे दोस्तों के साथ और नाउ मेरी बारी है आपको एंटरटेन करने की. सो गेट रेडी, मैं ढेर सारी इवेंट अपडेट आपको देने वाली हूँ और हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल होने वाली है सब कुछ आपको बताने वाली हूँ. इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मॉनिका के साथ रेडियो नायरा, पका देसी पका लोकल.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

0: आप लिसनर ऑन 101.9 FM, 99.9 FM LG4, 49 AM, 99.9 FM LG3 फॉर तेलुगु, नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मौरिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल रूम सेंटर।
1: वेल ग्लोरियस फोर्थ ऑफ ट्राइन पैलेस एंड अमेरिका 250 नॉर्थ कैरोलिना सेलिब्रेशन हमारे ट्रायंगल में सेलिब्रेट होने वाला है। जॉइन अस एज वी सेलिब्रेट अवर कंट्रीज 250th anniversary of signing of the Declaration of Independence. The day begins with the performance by Tryon Palace, Pipe and Drum Corps, an interpretive reading of Declaration of Independence on the front stage at the Tryon Palace. After the reading, ground and gardens are open to the public with no admission until noon. Immediately following the reading, the Pipe and Drum Corps marches of the palace grounds will take place there at Quay of Newburn Independence Day Parade and their leads to the parade of its final destination. मजा आने वाला है, मिस मत करिए, जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल के लिए जाइए मेरे सुनते रहिए मॉनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

ये रोमांटिक गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM SG4, 4090 AM and 99.9 FM SG34 पहले जो नायरा फेम है, हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल रूल्स एंड टॉक। हमारे ट्रायंगल में 2060 इंटरनेशनल ब्लैक थिएटर फेस्टिवल सेलिब्रेट होने वाला है। इंटरनेशनल ब्लैक थिएटर फेस्टिवल IBTF रोल्स आउट द पर्पल कार्पेट एवरी अदर समर, ट्रांसफॉर्मिंग विंस्टन सलेम इनटू द मेगा परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर विद मोर देन 120 परफॉर्मेंसेस इन नंबर ऑफ द सिटी वेन्यूज। Artists, audiences and industry leaders from across the globe unite for an electrifying week to many stage production, engaging program and cultural exchange. Main stage production ticket will be announced and available for purchase. It's all start. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, इनकी और जानकारी के लिए आप इन टॉपिक वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर। पक्का देसी, पक्का लोकल।

0: क्या गाना था यार, एक नंबर, मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। वेल 101.9 FM, 99.9 FM, LG4, 40, 90 AM, 99.9 FM, LG3, 4, Telugu, Naira, same. मैं हूँ आपकी अपनी मॉनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल रूट्स एंड टॉक।
1: वेल, हमारे ट्रायंगल में टॉप ऑफ द ग्रेट कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉब सिंक्लायर सेलिब्रेट होने वाला है। एंजॉय अ ग्रेट इवनिंग विद द बॉब सिंक्लायर एंड द बिग बील्स। द ग्रुप प्लेज अकॉस्टिक जैंट्स एंड कंट्री music characterized by the great musical stories, inspired harmonies, instrumental and arrangement. Top of the great set at the stage, Ella Grace and many more. Up to September, enjoy a relaxing evening filled with the fantastic live music, great company and community spirit. Please remember to bring lawn chair or a cushion for a few amphitheater sitting. You will may bring wine or beer to a concert, but please limit your consumption to the sitting area. No alcohol is allowed on the playground or in the parking lot. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल टून्स एंड टॉक, वो खूबसूरती जो नजरों में नहीं तो दिल में बस जाए। पेश है 92.5 सिल्वर ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन जिसमें है 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग की रॉयल चमक और डिजाइन में छुपी है बारीकी और प्रीशियस और सेमी प्रीशियस पत्थरों की अनोखी दमक। चाहे शादी हो या खास दिन हो या कोई त्योहार हो, हर मौके पर आपको दे एक एलिगेंट रॉयल लुक, क्योंकि आप सिर्फ ज्वेलरी नहीं पहनते हैं, आप पहनती हैं अपनी खुद की पहचान। 9 जेम्स ज्वेलरी, जहां हर गहना बनाता है आपकी खूबसूरती की पहचान। बुक ओनली बाय अपॉइंटमेंट। 9 जेम्स ज्वेलरी, वेस्ट कैरी 27519। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं +1 214 699 9454। फिलहाल कहीं जाइए या नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा।

अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम HD4 फॉर 90 एएम एंड 99.9 एफएम HD3 फॉर तेलुगु दायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल डून संटॉक। पता है बहुत थके आप सुबह सुबह ये वर्कलोड देखकर, बट डोंट वरी, आपको रिलैक्स फील करने के लिए ढेर सारी मस्ती कंटिन्यू रहने वाली है। वैसे आपने कुछ नोटिस किया क्या? नहीं ना, हम बातें और मस्ती करते करते सेकेंड आवर में प्रवेश कर चुके हैं और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। वेल, आपके साथ बातें और मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है, बट हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल हो रही है, कहाँ क्या होने वाला है, कौन से इवेंट होने वाले हैं, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ और ढेर सारे धमाकेदार गाने भी बजते रहने वाले हैं। इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो

ब्लॉसम ब्लॉसम गाना आपने सुना ऑन 101.9 FM, 99.9 FM, LG4 49 AM, 99.9 FM, LG3 तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मौरिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल रूम सेंटर। हमारे ट्रायंगल में जॉन पार्डी इन कॉन्सर्ट सेलिब्रेट होने वाला है। कंट्री म्यूजिक स्टार जॉन पार्डी इज ब्रिंगिंग हिज सिग्नेचर हॉन्की टॉन्क एनर्जी टू द किड रिवर स्टेडियम ऑन

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

इस ऑसम ब्लॉसम गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 FM 99.9 FM HD4 फॉर 90 AM 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल ट्यून्स एंड टॉक। वेल हमारे ट्रायंगल में बहुत जल्दी चेरी पॉइंट एयर शो होने वाला है। हेडिंग द 2026 इवेंट इज द रिटर्न ऑफ लेजेंडरी US नेवी ब्लू एंजल्स जॉइंड बाय एक्साइटिंग लाइनअप ऑफ मिलिट्री एंड सिविलियन एक्ट्स दैट कंटिन्यू टू इंस्पायर एंड कैप्टिवेट फन फेवरेट performances such as Jet Truck, Parachute, Jump Team and Aerobatic Pilot and Randy Ball, RJ Glitter and Tom Larkin are already slated to return. The show is free and open to the public throughout. The base pass is required for entry. For more information, check their website. Filhal kahin jaiye nahi, sunte rahiye Monica ke saath Radio Naira, Pakka Desi, Pakka Local.

ये अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एचडी 4 फॉर 90 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु। नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टून्स एंड टॉक। वेल मॉरिसले रेडी हो जाओ, आपका नया हैंगआउट स्पॉट आ रहा है। इंट्रोड्यूसिंग रच्चा बांडा फूड ट्रैक, ऑथेंटिक इंडियन स्ट्रीट फूड का असली स्वाद। अब आपके शहर में गर्मा गर्म समोसे, क्रिस्पी डोसा, चपाती चाट एंड फ्लेवर जो सीधा दिल तक जाए। ये सिर्फ फूड नहीं, ये है घर जैसा टेस्ट स्वीट वाले ट्विस्ट में। ग्रैंड ओपनिंग स्पेशल, आओ और पाओ एक सरप्राइज ट्रीट ऑन द हाउस। दोस्तों के साथ चिल करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो या खुद को ट्रीट दो, क्योंकि राचा बांडा में है हर बाइट फील लाइक होम। नाउ अराइविंग इन मॉरिस विलेज, कमिंग सून राचा बांडा, जहाँ टेस्ट भी मस्त और वाइब भी बेस्ट है। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: माहौल गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4.90 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल टू सेंटर।
1: बुलेवार्ड ट्रायंगल में बहुत जल्दी पीच पाथवे सेलिब्रेट होने वाला है। वी आर हाइडिंग 20 क्राफ्टेड ग्लास पीचेस अलोंग ट्रायल थ्रू आउट द सैंड हिल एंड इट्स योर जॉब टू फाइंड देम। Each glass of peach is one of a kind of treasure waiting to be discovered, created by friends at Starworks. List up your hiking shoes, grab your friend or family, and hit the trail for this fun. Free adventure celebrating the beauty of nature and spirit of summer in Sandhill. Each day on our live social media will announce trail for the hunt, so stay tuned. Filhal ke liye jaiye gani, sunte rahiye Monica ke saath Radio Naira, Pakka Desi, Pakka Local.

वेलकम है ऑन 101.9 FM, 99.9 FM, SG4 4090 AM, 99.9 FM, SG3 for Telugu, Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टून्स एंड टॉक। कहा जा रहा मैंने आपसे की एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होगी। देखा बातों बातों में थर्ड आर में प्रवेश कर गया है और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। ढेर सारी मसालेदार खबरें ट्रायंगल की कुछ अपडेट्स मैं आपको बताने वाली हूँ। पर अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हैं, कुछ कहानियाँ कुछ किस्से शेयर करना चाहते हैं या किसी लव्ड वन को आप बर्थडे विश करना चाहते हैं या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और 9192944800 पर और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर। फिलहाल और एक चाय का कप तैयार कर लीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: ingredients.
1: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering or family celebration?
0: Ask about customized catering menus at reasonable prices. Crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
1: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
0: Whether it's dinner with family, chai with friends or your next big event. Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors. Experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

Is the Malki Dal Gaani Kebab one more time? Welcome, Haji, on 101.9 FM, 99.9 FM, LG4 for 90 AM and 99.9 FM, LG3 for Telugu. Naira se, main hoon aapki apni Monica, aur aap sun rahe hain Triangle Dudes and Talk. ट्रायंगल में बहुत जल्दी विंडो वर्ल्ड 415.640 स्पीडवे सेलिब्रेट होने वाला है. डोंट मिस द विंडो वर्ल्ड 450 एट नॉट विक्सबोरो स्पीडवे. एक्सपीरियंस थ्रिलिंग नास्कर एक्शन लाइव. फील द रोर ऑफ इंजन एंड प्योर एक्साइटमेंट ऑफ हाई स्टेक रेसिंग. पॉइंट रेसिंग इज बैक एट नॉट विक्सबोरो. इट्स समर टाइम एंड स्पेक्टेकल्स एट वन ऑफ द नास्कर्स मोस्ट हिस्टोरिक ट्रैक. Don't miss epic tally gates and high-stake racing among the NASCAR's elite driving and team. The race is on. Multi-platinum country hitmaker is waiting for you. Filhal kahin jaiyega nahi, sun rahiye Monica ke saath Radio 9.

ब्यूटीफुल गाना आपने सुना ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 449 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल रूल्स एंड टॉक्स। विलियम ट्रायंगल में बहुत जल्दी ग्रासी क्रीक एंड जेम मिनरल शो होने वाला है। एक्सप्लोर अ वाइब्रेंट वीक लॉन्ग आउटडोर शोकेसेस ऑफ जेम मिनरल फॉसिल ज्वेलरी एंड लैपिस सप्लायर एट द ग्रीसी क्रीक मिनरल एंड जेम शो इन स्प्रूस पाइन। With more than 60 vendors from around the world, this family-friendly event offers something for collector and enthusiasts alike, from stunning gemstones to laboratory tools to unique specimens, hosted by Praver, Fire and Refuse to support local equipment purchase. The show features free admission and passing on-site food and open to all ages. मजा आने वाला है, मिस मत करिए, जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नाइगा। पक्का देसी, पक्का लोकल।

माहौल गाना था ना एक नंबर, मुझे तो मजा आ गया, आपको भी अच्छा लगा ना। वेल 101.9 FM 99.9 FM HD4 फॉर 90 AM 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोरिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल ड्यून्स एंड टॉक। लगता है मैं अभी अभी तो आई थी और अभी कहाँ जाने का वक्त हो चला है, और फिकर नॉट, आपके एंटरटेनमेंट में और मस्ती में कोई कमी नहीं होने वाली। ये रेडियो नायरा का और मेरा पक्का पक्का आपसे वादा है, हमारे होस्ट और मैं आपको साथ में एंटरटेन करते रहने वाले हैं ऑन 101.9 FM 99.9 FM HD4 फॉर 90 AM 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु रेडियो नायरा सुन रहे हैं आप, या आप प्ले स्टोर जाके हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं हमारे साथ। वेल कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इसी समय ओनली ऑन ट्रायंगल ट्यून्स एंड टॉक पर ट्रायंगल की स्पेशल मसालेदार धमाकेदार खबरों के साथ। वेल अगला गाना स्पेशल आपके लिए बजने वाला है, कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल। एंजॉय योर डे, बाय बाय।

0: greatest hits.
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्यूल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: साल की शुरुआत सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स के साथ। ट्यून इन टू रेडियो नायरा 2025 की परफेक्ट शुरुआत।
1: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna & Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 karat gold and 18 karat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest free financing available. Come see us for all your jewelry needs at Khanna & Sons Jewelers in Cary, North Carolina or call us at 9193883.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए
3: तो 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM। पक्का देसी, पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: love, you know, how Amul always does so creative creatives. मतलब उनके जो कटआउट्स होते हैं वो मैं न्यूज़पेपर में देखा करती हूँ और वो इतने अच्छे से उसे डिस्क्राइब किए हुए होते हैं. लेट मी टेल यू व्हाट आई एम टेलिंग अबाउट. दिस इज बॉलीवुड ब्लिस विद मी भारती ऑन योर ट्यून फ्रिक्वेंसी नायरा. यू नो अमूल joins the Operation Safed Sagar buzz with its latest topical Operation Peela Butter. The witty creative puts an Amul spin on military series celebrating the Indian Air Force's golden arrows, Squadron, and its brave air warrior. This looks so cute, man. It's like Operation Safed Sagar ke liye unhone Operation Peela Butter karke apne jawan aise doodle kiye hue. It's so cute. It's beyond cuteness. Well, stay tuned for more. I'll be back only on 9.
1: Yaar, India se. यारी है मशीन से, उड़े चाहे आसमां में, दिल है जमीन पे.

0: नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।
1: Ready to network with purpose and build relationships that last? Join the Morrisville Chamber of Commerce for the No Luncheon on Thursday, August 13th from 11:30 a.m. to 1 p.m. at the Holiday Inn RDU Airport. Relationship building expert Liz Rossilli, founder of Sales Savvy, will share practical strategies for making meaningful connections and following up authentically. Everyone is welcome. Reserve your seat today through the Morrisville Chamber of Commerce.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
3: LeafCars.com puts everything in one place so you can search, compare and buy with confidence. Choose from thousands of new and used vehicles backed by our trusted network of local dealerships with expert service, convenient locations, and flexible buying options. LeafCars.com makes the entire process simple. Start online and drive home with peace of mind. LeafCars.com. It's easier here.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्यूल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

तेरी स्किन में। सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

यहाँ मतलब हम गुरु रंधावा को क्रिटिसाइज करते रह गए उनके फाइन शिट सॉन्ग के लिए, और उन्होंने सच में इतनी सही चीज कर दी है ना, इट्स लाइक इंस्पिरेशन नाउ. दिस इज बॉलीवुड बिस विद मी भारती ऑन योर ट्यून फ्रिक्वेंसी नायरा. एंड यू नो गुरु रंधावा हैज जॉइन हैंड्स विद द सिख एड फाउंडेशन टू बिल्ड 35 परमानेंट फ्लड प्रूफ होम्स फॉर फैमिलीज अफेक्टेड बाय असम फ्लड्स. विद 7 लाख कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इनिशिएटिव, द सिंगर सॉन्ग राइटर कंटिन्यूज हिज एफर्ट्स टू सपोर्ट कम्युनिटीज इंपैक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर. आई थिंक दोज हु कैन हेल्प शुड डेफिनेटली डू द गुड थिंग्स. एंड नाउ इन दिस आई एम साइनिंग अप फ्रॉम द शो. अगली बार आपसे मिलूं. टिल देन टेक केयर ऑफ योर लवली सेल्फ. मेरी बात सुनिए. अमेजिंग शोज एंड सॉन्ग्स ओनली ऑन नायरा.

दो बटन दबाने से मैं भूल गया था। एनीवेज, टेक्निकल थिंग्स अपार्ट, लेकिन मैं सच कहूँ ना, कभी कभी लगता है कि हमने 90s के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया। हमने कैसेट की बात कर ली है, VCR की, वॉकमैन की, दूरदर्शन की, केबल TV आने के बाद की आज़ादी की बात, स्कूल के लंच बॉक्स से लेकर स्कूल के क्रश तक, 90s के सॉन्ग्स, मूवीज, क्रिकेट, फैशन, पॉप सॉन्ग्स, और हाँ वो लेजेंडरी सवाल, तुम्हारे घर में पहली बार मोबाइल फ़ोन कब आया था। लेकिन शायद प्रॉब्लम यही है, हम सोचते हैं कि अगर टॉपिक पुराना है तो बात भी पुरानी होगी। लेकिन ज़िंदगी थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, कहानियाँ पुरानी होती हैं लेकिन हम उनमें नए हो जाते हैं। वही गाना जो 1996 में सिर्फ एक रोमांटिक सॉन्ग था, आज सुनते हैं तो उसमें नॉस्टैल्जिया मिलता है। वही स्कूल की गली जहां हम क्रिकेट खेलते थे, आज याद आती है तो लगता है यार उस वक्त कितनी टेंशन फ्री लाइफ थी, एक टिप्पा बॉल कैच करते थे। और वही दोस्त जिसके साथ जब रोज मिलते थे, आज व्हाट्सएप पर हैप्पी बर्थडे डूड भेजने तक सिमट गया है। तो हो सकता है हमने 90s के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हों, लेकिन हमने 90s को अपनी आज की आंखों से कितनी बार देखा है? शायद आज वही करते हैं। कोई रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी टॉपिक नहीं है, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, कोई लेक्चर भी नहीं है, बस थोड़ी सी बातें होंगी, कुछ यादें होंगी और कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनका कोई आंसर नहीं होगा, और कुछ ऐसे आंसर्स मिलेंगे जिनके सवाल हमने कभी पूछे ही नहीं। और वैसे भी रेडियो की खूबसूरती शायद इसी में है, आप गाड़ी चला रहे हैं, चाय बना रहे हैं, ऑफिस में काम करने का नाटक कर रहे हैं, और इधर हम दोनों यानी मैं और आप बिना एक दूसरे को जाने एक ही बातचीत गुफ्तगू में शामिल हैं। थोड़ा अजीब है लेकिन बहुत खूबसूरत है। तो चलिए देखते हैं, आज 90 से पुराने डिब्बे को दोबारा खोलते हैं, हो सकता है अंदर वही पुरानी चीज मिलेगी, हो सकता है एक दो कैसेट मिले, एक पुराना मूवी टिकट, कोई स्कूल की याद, कोई भूला हुआ गाना, और हो सकता है किसी कोने में हम खुद भी मिल जाएं, थोड़े छोटे, थोड़े बेवकूफ, लेकिन शायद थोड़े ज्यादा खुश। मैं हूं अर्पित और आप सुन रहे हैं इधर उधर की बातें। तो चलिए देखते हैं आज क्या बात निकलती है, क्योंकि 90s के टॉपिक खत्म हो सकते हैं, 90s की यादें नहीं।

0: Discover wellness through the richness of Indian traditions. Stay tuned to Healthy Rehne Ke Liye Musical Parampara on Radio Naira.
1: अरे लव गुरु याद है जो रेडियो पे आते थे 90s में? अरे वही जो रात के लाइक 11 बजे आते थे अपनी भारी भरकम आवाज के साथ, जिनको सुन के बिल्कुल मन को शांति मिलती थी, ऐसा लगता था जब आप पूरे दिन की थकान करके आ रहे हो, जो जॉब कर रहे हैं वो लोग जॉब से घर पहुंचे हैं, टाइम मिला तो सो रहे हैं, या कॉलेज ख़त्म हुआ है तो आप हॉस्टल के अंदर आ चुके हो, बाहर ज़िंदगी थम चुकी है, ठंडी हवा बह रही है हॉस्टल में, बाहर ज़िंदगी थम चुकी है लेकिन अंदर जितने विचित्र प्राणी हैं सब जग चुके हैं, लेकिन उसमें भी एक अलग सा ही सुकून होता है, अलग सी ही एक शांति होती है। उस टाइम पे जब लव गुरु की आवाज़ आती थी तो बड़ा ही अच्छा लगता था। तो मैं सोचता हूँ अगर लव गुरु आज होते, आज उनका शो चल रहा होता, मुझे नहीं पता अभी चलता है नहीं चलता है, अगर उनका शो आज होता तो कैसे, क्यों, कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते? जैसे पहले सवाल आते थे उनके पास, गुरुजी वो मुझे देखती है लेकिन बात नहीं करती है क्योंकि सामने बहुत डिस्टेंस है, उसका घर उस तरफ है रोड के, तो मैं क्या करूँ? और आज सवाल आता कि गुरुजी वो मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी रोज देखती है लेकिन मेरी पोस्ट लाइक नहीं करती है, इसका क्या मतलब है? ये सुन के तो लव गुरुजी भी शायद चुपचाप रह जाते और फिर कहते, बेटा इसका मतलब है कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। क्या घटिया एक्टिंग करी है, मैं एक्चुअल डायलॉग बोलने के जाए मैं अपनी आवाज़ सुन रहा था कि मैं मिमिक भी ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। एनीवेज तो गुरुजी ये बोलते कि बेटा इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम है, बहुत वेल हो कि तुम बस यही देख रहे हो कि किसने तुम्हारी पोस्ट को लाइक करा या नहीं करा है। एक और क्लासिक प्रॉब्लम होती, गुरुजी हम रिलेशनशिप में तो नहीं है लेकिन वो किसी और को भी डेट नहीं कर सकती है, इसका क्या मतलब हुआ? तो गुरुजी तो चकरा जाते, कहते बेटा ये रिलेशनशिप नहीं है, ये टर्म्स और कंडीशंस के बिना सब्सक्रिप्शन है। उसके बाद जो मुझे लगता है आजकल हर एक के साथ है, जो एवरग्रीन सवाल है कि मैंने उसको मैसेज भेजा, उसने उसको देख लिया, 6 घंटे हो गए हैं लेकिन जवाब नहीं है, इंटरेस्टेड है क्या वो? तो लव गुरु क्या कहते इस टाइम पे? वो कहते पहले ज़माने में लोग जवाब का इंतज़ार करते थे और आज लोग ब्लू टिक का एनालिसिस करते हैं। वेल, अगर कोई बोलता है इस टाइम पे कि गुरुजी मेरी गर्लफ्रेंड मेरा फ़ोन चेक करती है तो गुरुजी शायद कहते हैं बेटा प्यार में ट्रस्ट जरूरी है लेकिन अगर तुम्हारा पासवर्ड भी उसको पता है तो तुम रिलेशनशिप में नहीं हो, तुम एक जॉइंट अकाउंट में हो। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज का, घोस्टिंग। पहले लोग कहते थे वो मुझे छोड़कर चली गई और आजकल कहेंगे गुरुजी कल रात तक तो गुड नाइट था, हार्ट आइकन्स बने हुए थे और आज व्हाट्सएप टीवी भी गायब है। तो गुरुजी कहते बेटा क्लोजर हर बार सामने वाले से नहीं मिलता, कभी कभी क्लोजर खुद ही देना पड़ता है और उसके लिए एक छोटा सा बटन होता है म्यूट या ब्लॉक। तो आपको क्या लगता है गुरुजी जो होते हैं इस टाइम पे तो किस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं? और इनफैक्ट गुरुजी ही क्यों, कोई और डिफरेंट शो जो उस टाइम बहुत पॉपुलर थे अगर आज होते तो वो क्या कर रहे होते, कैसे कर रहे होते आज की मॉडर्न सोसाइटी के

0: Shopping for your next car? LeafCars.com puts everything in one place so you can search, compare, and buy with confidence. Choose from thousands of new and used vehicles backed by our trusted network of local dealerships with expert service, convenient locations, and flexible buying options. LeafCars.com makes the entire process simple. Start online and drive home with peace of mind. LeafCars.com. It's easier here.
1: Four daughters rise with a single heartbeat for the motherland. Join Four Dimensions Entertainment for an unforgettable English play celebrating India's women warriors. Virangana on Sunday, August 30th, 3 p.m. Stewart Theatre. Group, student and senior citizen discounts available. Purchase tickets 4de.eventbrite.com.
2: Aaj ka plan kya hai? Same routine? या कुछ थोड़ा स्पेशल. मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करे 9842540111. रचा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.
3: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स.
2: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा.
3: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
2: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering or family celebration?
3: Ask about customized catering menus at reasonable prices. Crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
2: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
3: Whether it's dinner with family, chai with friends or your next big event. Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors. Experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
4: आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी, पक्का लोकल.
5: वेलकम बैक, मैं हूं अर्पित और आप सुन रहे हैं इधर उधर की बातें. जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि यार टॉपिक्स थोड़े कम होते आ रहे हैं. मैं सोच रहा हूं कि आप बात करूं, मेरे पास टॉपिक्स हैं बात करने के लिए, लेकिन हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं. मॉन्टी साहब, कैसे हैं आप?
6: बढ़िया सर, आप बताइए कैसे?
5: बस बढ़िया. पहले तो बताएं आप हैं कौन?
6: मैं एक छोटा सा सीधा साधा सा इंसान हूं और क्या.
5: नहीं, ये तो बहुत ही आपने मॉडेस्टी से बोल दिया है, बहुत हम्बल हैं आप. मॉन्टी साहब जो है वो एक पोइट हैं, शायरी लिखते हैं, आर्ट, यू नो लाइक प्ले लिखते हैं. बेसिकली आप वो हैं जो अपने विचारों को शब्दों के द्वारा परोसते हैं ताकि बाकी लोग भी लुत्फ़ उठा सकें उसका.
6: हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं या फिर ऐसा भी कह सकते हैं जो लोग सोचते हैं और कह नहीं पाते और लिख नहीं पाते. मैं सोचता हूँ शायद उनकी आवाज़ मैं बन सकता हूँ, उनके विचार मैं बन सकता हूँ.
5: भाई इससे ज़्यादा डीप बातें मुझसे नहीं होती हैं. नहीं, बहुत बढ़िया. मोंटी साहब का एक शो आने वाले हैं, वो भी शो करने वाले हैं सैटरडे को. और कुछ बताएं, क्या प्लान है आपके, क्या होगा शो का थीम?
6: अभी प्लान कर रहे हैं, शो का थीम यही होगा, लिटरेचर और आर्ट से जुड़े, थिएटर से जुड़े लोग होंगे. तो हम महीने में दो बार कुछ खास हस्तियों से आपको मिलाया करेंगे आरटीपी की, जो लिटरेचर से जुड़े हैं, साहित्य से जुड़े हैं, थिएटर से जुड़े हैं और जो किसी भी तरीके से कला में अपना साथ दे रहे हैं.
5: क्या बात.
6: और अल्टरनेट डे अदर डेज में तो हम लोगों को इनवाइट करेंगे थ्रू कॉल, जिनको लिखने का शौक है, शायरी का शौक है, वो अपनी शायरी मुझे भेजेंगे, हम उनके साथ डिस्कस करेंगे, हम ऑन एयर उन्हें करेंगे.
5: क्या तो बात है,
6: ऐसा विचार है, देखते हैं कब शुरू हो पाता है.
5: राइट. वैसे शेर और शायरी में डिफरेंस क्या होता है?
6: अरे शेर और शायरी में डिफरेंस, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका. शायरी शेरों को मिला के शायरी बनती है. शेर, कौन से शेर की बात कर रहे हो आप? अच्छा मैं समझ गया, शेर और शायरी में बहुत डिफरेंस, जो शेर होते हैं वो शायरी नहीं करते।
5: अच्छा नहीं नहीं मैं सही पूछ रहा था कि शेर जो होता है ना कि एक शेर है, नहीं एक, क्या बोलते हैं, अर्ज है, एक शेर है,
6: अर्ज किया ना,
5: अर्ज किया है, तो वो वाला शेर और शायरी क्या डिफरेंस है?
6: शायरी में जो नज्म होती है वो कई शेरों से मिलकर नज्म बनती है।
5: अच्छा,
6: लाइक पांच शेर हैं तो एक नज्म बन गई जिसको कहते हैं।
5: तो शेर एक जुमला हो गया बस, लाइक दो सेंटेंसेस का। अच्छा सा
6: नहीं हो, लेकिन हर शेर के मीनिंग बड़े डीप मीनिंग होते हैं।
5: हाँ, वो तो
6: और एक
5: है।
6: मीनिंग नहीं होता, बहुत मीनिंग होते हैं।
5: ओके, जैसे जिसको भा जाए,
6: जैसे जिसको भा जाए।
5: क्या बात है। वेल ये बातें तो हम आपके शो पे करेंगे, तो मैं अभी से लोगों को इस पे नहीं करना चाहूंगा, हम कुछ और बातें करते हैं
6: जी,
5: जिसके अंदर मैं बकवास करता रहता हूँ। 90s, मैं जो बातें करता हूँ ना 90s के बारे में बातें करता हूँ, 90s के अंदर क्या क्या करते थे, कौन सी बकवास करते थे, कुछ यूँ पुरानी यादें, कुछ
6: हमारे बचपन की बातें,
5: बचपन की बात है।
6: गिल्ली डंडे की बात करिए, बता क्या नहीं,
5: अरे नहीं भी करिए तो आप करो, बताओ
6: तो आप करो, गिल्ली डंडा किस किस ने खेला है, याद करो गिल्ली डंडा में क्या क्या खेल हुआ करते थे।
5: मैंने या वो होते हैं ना पेरेंट्स जो कहते हैं गिल्ली डंडा नहीं खेलना है, कंचे नहीं खेलने हैं, वहां बाहर बालू और सीमेंट पड़ा हुआ है उस पे जाके नहीं लोट लगानी है। अच्छा। तो मैं उन बच्चों की कैटेगरी में था, तो मैं गिल्ली डंडा कम खेला हूँ बहुत।
6: कंचे होते थे आपके पास?
5: कंचे रैंडमली कहीं सड़क पे पड़े हुए मिल गए तो मिलके खेलना कभी नहीं आया। वो जो उंगली में पकड़ के मारते थे ना, मुझसे कभी नहीं हुआ, उंगलियां इतनी मजबूत ही नहीं थी मेरी।
6: भाई साहब मेरे पास 5,000 से ज्यादा कलेक्शन हुआ,
5: 5,000,
6: और मेरे डैड ने एक दिन सारे फेंक दिए।
5: तो आप तो अपनी गली के वो होंगे चैंपियन टाइप के।
6: हम वो खेलते होते थे, जीत के आते थे लेकिन।
5: अच्छा तो जुआ हुआ प्रॉपर चलता था सट्टा
6: जी, आप
5: बचपन में ही हो गया था, वेगस के सारे टूर हो गए थे आपके। बढ़िया है, चलिए बड़ा मजा आ रहा है बात करने में, इसी बातों को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आके सुनाता हूँ बड़ा ही घटिया गाना, क्योंकि मैं बोर हो गया हूँ, बहुत अच्छा गाना सुनते हुए। गाने हर तरीके के होते हैं, अच्छे भी होते हैं घटिया भी होते हैं। वेल जो अगला गाना आ रहा है वो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट मैं कुछ चेंज करना चाहता था कि यार हर बार क्यों बोलना कि अच्छा गाना है, वो तो बहुत ऑब्वियस है ना, गाने खराब थोड़ी ना लगा रहे होंगे हम।

0: नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।
1: एंड अभी भी हमारे साथ बने हुए मोटी साहब, वो भी गए नहीं है, तो चलिए
2: चला जाता हूँ साहब।
1: अरे नहीं नहीं नहीं,
2: आप कहते हो चला जाता हूँ।
1: अरे वेल देखिए, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ क्यों ना आपकी एक नज्म हो जाए, एक प्रीव्यू मिल जाए आपके शो का।
2: अरे क्या बात है, आप हंसेंगे तो नहीं?
1: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं।
2: दांत देंगे?
1: दांत? अच्छा हाँ
2: दांत
1: बिल्कुल देंगे।
2: तो चलिए मैं आपको दो शेर सुना देता हूँ मेरे नज़्म के। चंद सिक्के जो ना हो जेब में, शहर में कोई पहचानता नहीं।
1: क्या बात है।
2: चंद सिक्के जो ना हो जेब में, शहर में कोई पहचानता नहीं। नकाम इश्क ना हो शायर, तो महफिल में किसी काम का नहीं।
1: ये आपने लिखी है? क्या बात है भैया, क्या बात है, ये तो गजब है यार। बाकी शब्दों के द्वारा जो खेला है आपने, आए हाय
2: थैंक यू जी,
1: मजा आ गया।
2: अगला शेर है जी, वो ढूंढते हैं शायरी में बस लफ्जों की जादूगरी।
1: जैसे कि मैं,
2: वो ढूंढते हैं बिल्कुल आप जैसे, वो ढूंढते हैं शायरी में बस लफ्जों की जादूगरी, पर लहू से जो लिखा है हर्फ कोई जानता नहीं।
1: भाई गलत शो पे आ गए, ये शो बकवास करने का है, ये आप टैलेंट मत दिखाएं यहाँ पे, इतना बड़ी डेप्थ है, बहुत बढ़िया लिखा है।
2: अरे नहीं सर, मुझे
1: गलत आदमी को सुना रहे हैं क्योंकि मैं ढंग से अप्रिशिएट नहीं कर पाऊंगा।
2: नहीं कोई बात नहीं,
1: लेकिन तो शब्दों को जो जोड़ा है ना, वो भी एक कला होती है कि आप।
2: अरे नहीं अर्पित भाई, आपको पता है हमारे आरटीपी में बहुत लोग लिखते हैं,
1: अच्छा
2: उनको मंच नहीं मिल पा रहा, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ एक शो शुरू करूं, जितने भी लिखने वाले लोग हैं सब जुड़ जाएंगे।
1: सही बात है, मजेदार,
2: आपको भी शायरी सिखाएंगे।
1: अरे बिल्कुल, मैं हाँ शायरी करूंगा मेरे स्टाइल की। वेल ठीक है, बैक टू थोड़ी बकवास करते हैं। तो हम पहले क्या बात कर रहे थे, अभी
2: अब कंचे की बात कर रहे थे,
1: कंचे गुल्ली डंडा। हाँ तो कंचा तो हो गया। हाँ गुल्ली डंडा आई थिंक एक दो बार ही खेला है मैंने, वो भी स्कूल में जब फर्स्ट सेकंड के अंदर, प्राइमरी स्कूल की छुट्टी जल्दी होती थी एक दो पीरियड पहले, और जो बड़े स्कूल होते लाइक फिफ्थ सेवन्थ क्लास, उनकी लेट होती थी तो हमें वेट करना पड़ता था कि कब बस आके लेके जाएगी। तो ग्राउंड के अंदर जो बच्चे खेल रहे हैं तो हम भी इन्वॉल्व हो जाते थे।
2: तो आप बस पे जाते थे स्कूल?
1: वेल हाँ, मतलब मैं तीन जगह अलग अलग रहा हूँ, तो एक जगह बस से गया, एक जगह मैं हो जो आते ना टेम्पो विक्रम बड़े वाले ऑटो, उनसे आता था शेयर्ड ऑटो से, और फिर दूसरी जगह जब मैं गया वहां पे साइकिल से।
2: तो वहीं मैं आपको लाना चाह रहा था,
1: अच्छा
2: क्योंकि हम छोटे शहर से आए लोग हैं, हम साइकिल पे जाते थे, पहले जाते थे रिक्शा पे, जब थोड़े से बड़े हुए साइकिल ले लिया। मेरा क्वेश्चन नहीं है, साइकिल से गिरे कितनी बार हो?
1: नहीं साइकिल
2: जबरदस्त वाले,
1: ना ना ना इतना कुछ खास नहीं हुआ मेरे साथ, मैं बहुत सेफ था। लेकिन मुझे ये लगता है कि मेरे माँ बाप ने, माँ बाप तो पापा तो चलो ठीक है, मम्मी ने कैसे छोड़ दिया मुझे कि हाईवे पे, मेरा स्कूल था 7 किलोमीटर, जैसे वो अभी हम सुनते हैं ना जो सीरियल्स के अंदर होता है कि माँ बाप बोलते थे कि मैं 40 किलोमीटर दूर जाता था नदी तैर के, उसमें मगरमच्छ होता था, जंगल और पहाड़ चढ़ के। मैंने वो नहीं करा है, लेकिन मैं 7 किलोमीटर दूर, मैं नन्ही सी जान,
2: 60
1: अरे दूसरी शहर आ जाएगा 60 इतना भी बुरा नहीं है बरेली यार।
2: अच्छा, बरेली शहर,
1: बरेली में अंदर है स्कूल, अच्छे अच्छे हैं, प्रियंका चोपड़ा पढ़िए, कुछ पढ़ गई वो बनी है मिस वर्ल्ड। एनीवेज सही है ना, मुझे जब भी मौका मिलता है मैं थोड़ा स्वैग दिखा देता हूँ।
2: अरे नहीं आना चाहिए।
1: बरेली विद प्रियंका चोपड़ा दिशा पटनी, चाहे मैं मिला किसी से नहीं हूँ, लेकिन हाँ बरेली के अंदर कभी भी जाओगे ना, हर कोई अरे हाँ मेरे सामने वो जो है वो उस घर में आती थी, उसकी दोस्त वहां रहती थी, और मेरी जो बहन है वो उसकी दोस्त थी, ऐसे कनेक्शन सबके निकल के आते हैं, दिशा पटनी से, प्रियंका चोपड़ा से। मेरे ट्यूशन का टीचर था, वो कहता था कि उसने दिशा वो प्रियंका चोपड़ा को थप्पड़ मारा था क्योंकि मैं मैथ्स का होमवर्क करके नहीं आई थी। कुछ भी चलता था यार।
2: नहीं सही है।
1: तो
2: प्रियंका चोपड़ा मिलने आती होगी अब तो यूएस में आपके घर इधर कभी?
1: हाँ जीजा जी है ना हमारे तो साथ। ना तो मैं क्या बात कर रहा था, स्कूल। हाँ तो 7 किलोमीटर स्कूल था क्योंकि एयरफोर्स में, और हाईवे था, ट्रक चलते थे, उससे मैं जाता था।
2: अरे क्या बात,
1: आई वाज लाइक कि डूड मम्मी, मतलब मुझे तो एक्साइटमेंट था शुरू शुरू में, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, साइकिल से जा रहा हूँ। फिर मैं तोते उड़ने शुरू हो गया कि इतनी भरी दोपहर में लू चल रही है, कई बार हवा उल्टी चलती थी तो आप साइकिल खड़े हो गए चला रहे हैं, साइकिल ही ना चल रही है, फिर आप वेट करते हैं कि पीछे ट्रक आ जाए, और ट्रक जब तेजी से निकलता था तो पीछे से हवा का पुश मिलता था, तो हमें लगता है अरे वाह ये जो मैंने 2 मीटर जल्दी क्रॉस कर लिए हैं मेरे।
2: अच्छा एक बात है अर्पित भाई, तब हम छोटे थे तो आपको डर नहीं लगता होगा ट्रक क्रॉस कर गया साथ से, ये हो गया वो हो गया,
1: ना ना ना।
2: तो लेकिन अब आप सोचिए, अब साइकिल से आप जा रहे हो उसी हाईवे पे और ट्रक क्रॉस करेगा, आपको डर लगेगा।
1: अरे अभी तो मैं अमेरिकन टोबैको ट्रेल पे चला जाता हूँ, मुझे वहां पे डर लग जाता है पीछे से वो बोल के आ रहे ऑन योर लेफ्ट, सुनाई देता नहीं है, गाने सुन के चल रहा हूँ।
2: लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है? पहले डर नहीं लगता था, अब डर लगता है, क्या सोचते हैं?
1: जिंदगी ज्यादा देख ली है
2: मेरे ख्याल से, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गई है हमारे ऊपर, हमें जिंदा रहना बहुत जरूरी है। यही बात है शायद, तब हमें पता ही नहीं होता था।
1: राइट, तो यानी बुढ़ापे में डर नहीं लगेगा?
2: बुढ़ापे में
1: या जब बच्चे अच्छे सब छोड़ के जा चुके हैं, आप बस बैठे हुए हैं ओल्ड एज में,
2: अभी बुढ़ापा आना है हमारा क्या?
1: नहीं भाई, मैं तो अच्छा खासा जवान हूँ अभी। वेल, ये सब गुफ्तगू हमारी चलती रहेंगी, तब तक बढ़ते हैं आगे गाने की तरफ, क्योंकि मैं तो भूल भी जाऊंगा यार कि बात इतनी अच्छी लगती है मुझे कई बार कि गाने चलाना भूल जाता हूँ। बट ठीक है, टाइमिंग सही है, आगे बढ़ते हैं।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: You're listening to WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM, WDUR Durham.

0: सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लो।
1: वेलकम बैक। और मैं भूल गया था कि आप लोग भी सुन रहे हैं गाने और हम यहाँ आपस में बातें करते रह गए। मैं मोंटी साहब और हमारी वैष्णवी।
2: हेलो अर्पित,
1: कैसी हैं आप? कहाँ से आ रही हैं इतनी देर?
2: मैं बढ़िया, बस बाजू में बैठी थी दूसरे कैबिन में। और
1: अरे क्या बात है,
2: स्टूडियो में ही रहती हूँ मैं।
1: जी
2: जी तो, मरना स्टूडियो में।
1: अरे मरने से अच्छा याद आया कि चलो कुछ भूतों की बातें करते हैं। क्या रहा है आपके जीवन के अंदर भूतों से?
2: अब क्या बताएं,
1: भूतिया एक्सपीरियंसेस।
2: आप मानोगे नहीं, वो भी मेरे एक लाइफ में जैसे जीने मन, जैसे मैं स्टूडियो में रहती हूँ ना जीती जागती, उसी तरीके से ये भूत वाले सीन्स भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बिकॉज आई डू अ गेम एंड जिसे हम बना रहे हैं वो भूत का गेम है।
1: लास्ट ईयर से सुन रहा हूँ, बना रहे हो आप?
2: बन रहा है, डर भी लगता है ना भूतों से। सपनों में भी आ रहे हैं वो।
3: मेरा क्वेश्चन है, भूत मर के क्या बनते हैं फिर?
2: आत्मा,
1: इंसान।
2: अगला जन्म, नेक्स्ट भूत। ट्रांसफर कर देते होंगे अपनी पोस्ट को वो दूसरे भूत को।
1: आपका कुछ रहा एक्सपीरियंस बिल्कुल जिसे रॉन्गटे खड़े करते हैं,
3: भूत बनने में या भूत दिखने में?
2: भूत बनते भी हो आप?
3: हम थिएटर करते हैं, हम कुछ भी बन सकते हैं।
2: अरे वाह, सही है।
3: नहीं, भूत का एक्सपीरियंस नॉट इन टॉप ऑफ माय हेड, बट सबका बचपन में कुछ ना कुछ रहा होता है।
1: हाँ, दूसरी कहानी भी सुना दो, सुनी तो होंगी।
3: अंधेरी गलियों में कभी रात को लेट पहुंच रहे हैं, 8-9 बजे घर आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है पीछे कोई है ना, तो आप भागते हो, फिर मुड़ मुड़ के पीछे देखते हो, फिर भागते हो, और घर आने तक आपकी सांस फूल जाती है ना, आपको रोने जैसे हो पड़ता है आपका।
1: वो घुंघरू की आवाज, पायल की आवाज भी आती है?
3: नहीं, मेरे पीछे भूत पड़ते थे।
1: अच्छा,
3: भूतनियां नहीं,
1: वहां पे भी लग खराब। आपका क्या रहा, बताओ?
2: मेरा तो देखो, अब मैं रिसेंटली बताती हूँ, जैसे मैं गेम बना रही थी, बना रही हूँ आई मीन ऑफ कोर्स, और हम लोग एक सीन के बारे में बात कर रहे थे कि चलो ये सीन में ना दरवाजा ऐसे खुलेगा और इस तरीके से आवाज आएगी। हमने बात हो रही है हमारी टीम से और अचानक क्या हुआ, मैं बैठी थी ड्राइंग रूम में एंड देन सडनली जो मैंने बात कही थी कि दरवाजे की आवाज इस तरीके से आएगी, वो कर वाला साउंड जो होता ना, एकदम धीरे से खुलेगा और ऐसी आवाज आएगी, एंड इमीडिएटली जो हमारा गेस्ट वॉशरूम था उसका दरवाजा अपने आप खुल गया विद द सेम साउंड। एंड उसके बाद तो मतलब मैं स्टैचू बन चुकी थी, मतलब अब चिल्लाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, उस तरीके का सीन था।
1: फिर?
2: तो उसी तरीके से जब से ये गेम बनाना मैंने शुरू किया है ना, तब से हर चीज जो भी मैं डिस्कस कर रही हूँ, नेक्स्ट डिजाइन ऐसा होगा या फिर नेक्स्ट सीन ऐसा होगा, एंड सेम थिंग मैं देख भी रही हूँ, उसी तरीके चीजें मुझे दिखाई दे रही है। आई डोंट नो हाउ इट इज, you know, it's just a coincidence. I'm thinking it should be a coincidence. Nothing more than that.
3: मोहब्बतें movie में dialogue था ना, जिसे आप दिल से चाहो तो कायनात भी आपकी help करती है, तो भूत भी आपकी help कर रहे
2: हैं। इतनी help नहीं चाहिए।
1: कुछ गुंजाइश है game के अंदर stock market का scene लाने की, तो you can also like ना predict कर सकते हो कि ये market जो है stock ऊपर जाने वाला है, वो हो जाए।
2: मैं वही सोचती रहती हूँ, पता है, मैं सोचती हूँ मैं भूत के game बनाने से अच्छा होता मैं stock market के ऊपर game बना, और जो मैं सोचती वो होता रहता।
1: फिर गेम बनाने की जरूरत क्या पड़ती?
2: अरे
1: बढ़िया।
2: वेल, और क्या आप बताएं, आपके आपके इस लाइफ में तो बहुत कुछ हुआ होगा।
1: मैं कहानी काफी सुना चुका हूँ लोगों को, तो मैं सोच रहा हूँ मैंने कौन सी नहीं सुनाई होगी। मैंने एक है जो काफी डेडली हॉरर है, जो मुझे लगता है ये सुनानी चाहिए।
2: ओह माय गॉड,
1: लोग ड्राइव कर रहे होंगे तो इट्स मे नॉट बी सेफ।
2: ओह माय गॉड, अगर आप जिंदा हो तो आई थिंक यू कैन शेयर।
1: जिंदा हो? अच्छा, मुझे लगा जिंदगी ना मिले दोबारा की कुछ शायरी सुनाने वाली हो।
3: नहीं तो
1: अगर तुम सांसें ले रहे हैं तो जिंदा,
3: अगर आप जिंदा हो तो जिंदा नजर भी आने चाहिए।
1: वो आती है उसकी जो नज्म है, जिंदगी ना मिले दोबारा की,
2: कितनी मस्त है
1: वो बड़ी सही लगती है। अगली बार चलाऊंगा मैं।
2: अरे मुझे वो अच्छा लगता है, दिल आखिर तो क्यों रोता है। You remember that from?
1: हाँ, I think वो फरहान अख्तर की
2: क्या है, मतलब वो मस्त है। मैं मतलब हमेशा सुनती रहती हूँ उसको, दिल आखिर तो क्यों रोता।
1: हाँ, वो बहुत मस्त है, उसकी पोएम्स जो भी हैं
2: बहुत,
1: और जो उन्होंने सैंड पेपर अपनी वॉइस में सुनाई है, अरे क्या बात है,
2: गजब है एकदम, सही
1: वो मस्त है।
2: वो मतलब एकदम एम्बियंस क्रिएट कर देता है, माहौल ही बना देता है जैसे।
1: क्या कुछ पढ़ने वाले आप?
3: आप इजाजत दो तो
1: अरे जरूर
2: इजाजत
3: एक कविता सुनाता हूँ,
1: सुनाइए,
3: निकलता हूँ, आपका टाइम खराब कर रहा हूँ
1: ऐसे बहुत कुछ अच्छा कर रहा हूँ यहाँ पे,
3: ऐसा बोलना पड़ता है ना तो फिर लोग चांस दे देते हैं,
2: ओह माय गॉड,
3: या करके ना नहीं देते शायरों को,
1: दो चार दिन हमारे रेडियो शो में पता चलेगा
3: शायरों को अंडा ही बढ़ते हैं जी। तो एक छोटी सी नज़्म है आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ। खेद में रहकर जीना और जीते रहना, खेद में रहकर जीना और जीते रहना चले जाने से बेहतर नहीं होता।
2: ओह माय गॉड,
1: डीप है।
3: तो क्या तो बेहतर क्या होता है? बेहतर होता है किसी अनजान बस्ती में किसी सूनी सड़क की पगडंडी पर खड़े रहना घंटों पर, या फिर अचानक से कुछ दिनों के बाद चौंका देना आईने को अपनी ही शक्ल दिखाकर।
2: वाह,
3: बेहतर होता है मीलों चलते रहना रख कर हाथ अपने ही कंधे पर।
2: ओह माय गॉड,
3: और हर बार संभल जाना ठोकर लगने से खुद ही। बेहतर होता है झिड़क देना खुद को करके सबसे छोटे बच्चे की तरह। झिड़क देना खुद को करके सबसे छोटे बच्चे की तरह और सुबकते रहना दोपहरी में छत पर पानी की टंकी के निचले कोने में। ये बचपन की बातें याद आ गई होगी।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: बेहतर होता है कभी कभी खो जाना अकेली सड़क पर जहां दूर तक कोई नजर नहीं आता हो, और फिर ढूंढना खुद को पीछे मुड़ मुड़ कर। बेहतर होता है सुन लेना अपनी ही आवाज कुछ क्षणों के बाद और समझाना खुद को कि ये खामोशी के सिवा कुछ भी नहीं। बेहतर होता है ढूंढना अनगिनत खामोशियां जोर जोर से चिल्लाकर खामोशी के पाताल में पर किसी आवाज का वापिस ना आना। बेहतर होता है कभी कभी चुपचाप बिना कुछ कहे चले जाना। बेहतर होता है।
2: वाह, क्या
1: तो मैं अपनी भूत वाली गानी सुनाता हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया,
3: बेहतर है, बेहतर होगा, सुनाइए।
1: अरे नहीं, बहुत बढ़िया थी, बहुत उम्दा, और जिस शिद्दत से सुनाई ना,
3: और अभी अभी मैं तो बच्चा हूँ इसमें, अभी हम शो शुरू करेंगे तो हमारे गुरु आएंगे, हमारे उस्ताद आएंगे, और मुझे पता है हमारे आरटीपी में बहुत लोग लिखते हैं जिन्हें मंच नहीं मिल रहा,
2: बिल्कुल,
3: और आपके सहयोग से अब शायद वो मंच मिल जाएगा।
2: रेडियो नायरा ऑलवेज वेलकम्स एंड एक्चुअली बहुत एनकरेज करती है रेडियो नायरा जिनके पास भी ऐसी टैलेंट है और जो कोई आके आगे बोलना चाहता है कुछ भी, यू नो वी ऑलवेज वांट पीपल टू यू नो कम एंड टॉक टू अस एंड टॉक टू कम्युनिटी और दिखाए कि वो क्या क्या कर सकते हैं।
1: एक करेक्शन, रेडियो नायरा सिर्फ टैलेंटेड लोगों को भी एनकरेज नहीं करती है, जो नॉन टैलेंटेड होते हैं ना उनको भी एनकरेज करती है। एग्जांपल,
2: किसकी, मेरी बात कर रहे हो क्या?
1: भाई आप आ रहे हैं, आप तो बहुत टैलेंटेड है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे अभी तक निकाला नहीं गया।
3: टैलेंट तो भाई सब में होता है, तुम्हें भी कोई ना कोई टैलेंट है। तो ये रेडियो नायरा

0: दर्द वाली शायरी है, मोटिवेशन वाली शायरी है।
1: नहीं, दर्द वाली होती है जब पढ़ती है, फटके पढ़ती है तो दर्द वाली शायरी निकलेगी।
2: निकलेगी, जरूर निकलेगी।
0: सही है।
1: लेकिन मैं तो अपनी शायरी सबसे पहले अपनी बीबी को सुनाता हूँ।
2: Wow,
1: वो अप्रूव करती है तभी सुनाता हूँ।
0: अच्छा, तो रिजेक्ट कितनी हुई है? वो वाला पाइल अप कहाँ?
1: अच्छी बात यह है, वो रिजेक्ट करती नहीं कोई भी।
0: अच्छा,
1: क्योंकि उससे शायद समझ नहीं आती मेरी।
0: ठीक है यार, आगे बड़ो, रोटी सीखनी है। वरना पूछे रिजेक्ट क्यों करती, इसमें खामी क्या थी, क्या समझ नहीं आई? समझाता हूँ अच्छे से। बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़िया सा गाना ढूंढ के लाते हैं। हे भगवान, मैंने फिर से कह दिया बढ़िया सा गाना, बट ठीक है, आदत से मजबूर। पढ़ते हैं।

0: ready to network with purpose and build relationships that last? Join the Morrisville Chamber of Commerce for the KNOW Luncheon on Thursday, August 13th from 11:30 a.m. to 1 p.m. at the Holiday Inn RDU Airport. Relationship-building expert Liz Rossilli, founder of Sales Savvy, will share practical strategies for making meaningful connections and following up authentically. Everyone is welcome. Reserve your seat today through the Morrisville Chamber of Commerce.
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.
2: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स.
1: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, to the signature soul dal bukhara.
2: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
1: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering or family celebration?
2: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
1: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
2: Whether it's dinner with family, chai with friends or your next big event. Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors. Experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: वेलकम बैक, मैं हूँ अर्पित और आप सुन रहे हैं इधर उधर की बातें। और अगर आपको लग रहा था कितने एड्स आ रहे थे, तो मुझे भी वही लग रहा था, बट ठीक है। जैसे कि मैंने दो तीन बार कहा, पापी पेड़ का सवाल है, करना पड़ता है। अगर वैष्णवी सुन रही होगी तो हो सकता है अगली बार आपको मेरी आवाज़ सुनाई ना दे। एनीवेज, मैंने सोचा कुछ और था, आज मैं कुछ और करूँगा, बट मोंटी साहब मिल गए तो बात कहीं की कहीं चली गई। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं एक ट्यून सुनाना चाहूँगा आपको शुरू से, और मुझे नहीं पता कितने लोग उसको पहचान पाते या याद कर पाते कि क्या डैशिंग ट्यून थी ये। तो पहले तो मैं आपको सुना दूँ, और कुछ क्वेश्चन नहीं है, आप फोन करके मुझे बताएं अच्छा होगा, बट ये बस आपके लिए, जिनको वो ट्यून सुन के एकदम से याद हो जाएंगे, कान जो होते हैं ना एंटीना खड़े हो जाएंगे, अरे यार ये ट्यून मुझे मालूम है, क्या सुनते थे हम। जिसको नहीं पता उसको नहीं पता है, जिसको पता है भाई उसको पता है। तो पहले तो हम सुनना चाहेंगे।

0: तो मुझे नहीं पता कितने लोग अपनी पुरानी रतलाम की गलियों में चले गए इस ट्यून को सुन के। बट हाँ, अगर आप मुझे फोन करके बताएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। इस ट्यून के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इस मूवी के बारे में। नंबर है 9199998595। मोंटी साहब सुनाइए। अरे मुझे डाउट हो रहा है, मैं ही हूं ऐसा जो ये सब चीजें सुनता रहता हूँ।
1: आपके पास शायद वॉकमैन होता है, जब 7 किलोमीटर दूर आप जो जाते थे ना स्कूल में।
0: मेरे पास फोन तो ही ना होता था, ये करता हुआ जा रहा हूँ, साइकिल चला रहा हूँ।
1: वॉकमैन था ना, तो
0: वॉकमैन। ना ना ना, वो सब नहीं भैया, हमारा बचपन ऐसे ही बीता। बस
1: पढ़ने वाले बच्चे थे आप।
0: पढ़ने वाले वो पता नहीं, बस हाँ जो बड़ी दीदी थी उसकी बची कुछ चीजें हमें मिलती थी, उसके कपड़े पहन के चले जाते थे। स्कर्ट नहीं पहनता था, शर्ट उसकी है, स्वेटर उसका है, जूते उसके हैं। इस चक्कर के अंदर कि मैं 10th क्लास के बाद सैटरडे को स्कूल ही नहीं गया, क्योंकि जूते ही नहीं थे मेरे पास सफेद।
1: अरे
0: पैंट नहीं थी सफेद, जूते नहीं थे, तो मेरा 5 डे स्कूल था।
1: क्या
0: मम्मी को ऐसे कन्विंस किया था मम्मी, इसलिए। हाँ लास्ट टाइम आई थिंक संदर्भ, उनका फोन आया था, वो भी शायद केवी के थे, संदर्भ थे या अमित या रोहित, डैमेट मेरी लिस्ट में लिखा हुआ है। उन्होंने उससे सवाल पूछा था कि मैं किस हाउस का था, केवी से। मैं केवी से पढ़ा हुआ।
1: ओके,
0: हाउसेस होते हैं ना स्कूल के अंदर, तो मैं सकते में आ गया। आई वाज लाइक कि फिर तो मैंने कुछ बोल दिया जो मैं होता था। देन आई रियलाइज कि डूड 10th 11th के तो मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मैं तो जाता ही नहीं था, क्योंकि हाउस मीटिंग तो सैटरडेज को होती थी, और मैं जब जाता ही नहीं तो मुझे पता ही नहीं मैं किस हाउस में हूँ। आप क्या होते थे हाउस?
1: नहीं, हम
0: स्कूल
1: तो
0: जाते थे।
1: बहुत छोटे शहर।
0: अच्छा।
1: छोटे शहर में हाउस नहीं होते, छोटे से स्कूल होते थे।
0: अच्छा,
1: छोटे
0: इतने बच्चे ही नहीं है कि हाउस में
1: बच्चे नहीं होते थे।
0: ओके,
1: छोटे छोटे स्कूलों से पढ़ के यहाँ तक पहुंचे।
0: अरे क्या बात है। That's a difference ना, हमारे काफी listeners होंगे जो काफी बड़े बड़े स्कूलों से हैं। That's a difference।
1: हाँ ये difference।
0: वो हमें सुन रहे हैं।
1: हाँ पर सबका अपना अपना
0: मजा। हमें सुन रहे हैं।
1: आपको सुनने वाले हमें सुन रहे हैं, और हमें वो भी लोग सुन रहे होंगे।
0: माइक किस तरफ हमें? गेम हमने पलट दिया।
1: सही कहा आपने।
0: बहुत गालियां पड़ने वाली हैं आज।
1: अभी तो आपका ही फोन नंबर है, मेरा तो फोन नंबर
0: नहीं। मेरा फोन नंबर नहीं है, रेडियो नायरा का नंबर है लोगों के पास, पर कोई घुमाता नहीं है।
1: घुमाइए जी, अर्पित जी हमेशा आपके फोन की वेट करते हैं। अर्पित जी को फोन कीजिए आप, और हमें फोन करके भी बताइए हमारा जो नया शो आ रहा है, क्या आप इंटरेस्टेड हैं उनको सुनने में, या आप अर्पित जी को फोन करके या रेडियो नायरा के जो भी ईमेल जो भी मैसेज आप करते हैं तो उन्हें बताइए, थोड़े से एनकरेजमेंट हमें भी मिलेगी इसके लिए। तो जल्दी हम इसके लिए प्रिपेयर करेंगे और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द शो आपके सामने लेके आए।
0: आप तो पैदाइशी रेडी हैं, आपको तो जरूरत ही नहीं है। इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन मैंने तो कभी दिया ही नहीं है अपने शो का, किसी और के शो का।
1: अरे आपको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत।
0: तो चलिए वापस हम जाते हैं, कुछ और बातें करते हैं। 90s की गुल्ली डंडा की बात हो गई, कंचे की बात हो गई, और क्या चीज़ है, और कौन सी है आपकी जो आपको लगता है कि या ये कैसे भूल गए?
1: तो लंबे लंबे हेयर रखने का शौक था आपको छोटे होते?
0: मेरे तो
1: गालियां पकड़ती थी, पकड़ के कान से जाते थे भाई कटवा ले।
0: हाँ
1: हम रोते थे नहीं, मम्मा की तो सुनते नहीं थे नहीं कटवाने, फिर डैडी कटवाते थे पकड़ के। था ऐसा कुछ हमें? था
0: ना, मुझे बाल कटवाना बोरिंग कम लगता था, तो मेरा कोई शौक नहीं था। मुझे हाँ मुझे कटवाना बोरिंग लगता था, मुझे शौक नहीं था कि मुझे बाल लंबे रखने कुछ करने। मम्मी तो मेरे शायद 9th to 10th क्लास तक बाल मुझे काट के भेजती थी, मुझे नहीं था ये सब। बहुत ही लुल आदमी था, मुझे तैयार करना ये सब का मम्मी का होता था। मुझे कॉलेज के शायद मैं 2nd ईयर था या 3rd ईयर में गया हूँ, तब मुझे रियलाइज हुआ कि जब जब कपड़े खरीदने जाते हैं
1: बाल भी कटवाने होते हैं।
0: नहीं नहीं, तो कपड़ों में साइजेस होते हैं, मुझे नहीं पता था कि स्मॉल मीडियम ये सब होता है।
1: 10th तक तो आप अपनी सिस्टर के पहनते थे ना, आप बता रहे थे।
0: हाँ,
1: तो उसके बीच में 2-3 साल इतना टाइम तो लग जाता है। हाँ, तो... सही पकड़ा है बे।
0: अरे सही बिल्कुल। नहीं तो ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये हकीकत है, मुझे नहीं पता था। तो बाल कटाना
1: साहब, आप पढ़ने वाले बच्चे थे।
0: पढ़ने वाले नहीं, हमें हमारी जिंदगी जीने दो, हम वो वाले थे।
1: आप होशियार किस्म के,
0: टच मी नॉट टाइप है, हमें छोड़ दो हमारे हालात पे।
1: मैं पहली बार जब आप से मिला था मैं तभी समझ गया था आप पढ़ने वाले बच्चे।
0: अच्छा, लेकिन हाँ बाल भी तो क्या वो होते थे ना, क्या यहाँ पे तो नंबर बताना पड़ता है कि यहाँ पे साइड में 6 ऊपर 7 और यहाँ पे ये, वहां जाके छोटे कर तो इतने साइज करना है।
1: हाँ।
0: और कुछ बताना ही नहीं है।
1: और जब पापा साथ में आते थे वो तो उंगली दिखाती थी, इतने से कर दो बस, इससे बड़े हो तो देखो।
0: हाँ, क्योंकि बार बार पैसे नहीं खर्च कर रहे बाल कटाने में। हाथ में नहीं आने चाहिए,
1: हाथ में नहीं आने चाहिए।
0: लेकिन मुझे वो याद है,
1: अच्छा होता
0: है। हाँ, लेकिन वो जब आप बाल हाथों जब हाथ फेरते थे बालों में कटवे, तो वो जो स्मूथ एक अजीब सी फील आती थी ना, वो मैं बहुत मिस करता हूँ। वो बहुत मुझे मजा आता था। कि ऐसे कर रहा हूँ। मेरी दीदी तो मेरे सर पे हाथ फेरती रहती थी फिर रात को, उसे अच्छा लगता था वो।
1: आप मानोगे नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे दो बेटे हैं, दोनों का हेयर कट वो मुझसे करवाते हैं। मैंने बाहर करवाया, उनको अच्छा नहीं लगता। वो डैड आपसे कट करवाना
0: क्या होता
1: है? जो मुलट कट बाहर होता ही नहीं यहाँ पे ढंग का।
0: अच्छा,
1: तो मेरे दोनों बेटे का मुलट कट मैं खुद करता हूँ, इतना अच्छा होता है। मैं उनको कहता यार मेरा भी कर दिया करो, मेरे को उनको आता नहीं करना।
0: कोई नहीं, आपको तो आता है ना,
1: तो ऑडियंस से पूछते हैं किसी को।
0: ऑडियंस से पूछ लो कब आऊंगा, कब आऊंगा,
1: तो आ जाओ आप जब मर्जी।
0: क्या बात है। तो दोस्तों, शायरी के साथ साथ अगर आपको अपने बालों का भी कुछ करवाना है तो प्लीज सैटरडे को शो सुनिएगा शाम को 5 से 7।
1: अगर शो सुनेंगे तो
0: ओके, बिल्कुल बिल्कुल सुनेंगे सुनेंगे। बाल कटवाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ।

0: लिविंग मींस इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: वेलकम बैक. हम सुन रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं इधर उधर की बातें और मैं हूं अर्पित. तो मोंटी साहब
2: जी जना,
1: अब क्या बात करें?
2: आपका शो है बात करिए आप बात. मैं तो आज आपसे मिलने आया हूँ, देखता हूँ कैसे आप करते हैं शो. आपसे सीखने आया हूँ सर.
1: जिंदगी से बड़ा और कौन अच्छा सिखा सकता है मैं.
2: क्या बात है, तो जिंदगी को बुलाते हैं.
1: अरे हर जवाब के, हर सवाल के जवाब है आपके पास तो. ठीक है, तो कुछ बताएं अपने. हाँ, तो स्कूल आप कैसे आते थे, साइकिल से?
2: हम साइकिल से जाते थे.
1: बढ़िया. अपने ग्रुप में या अकेले आते थे आप?
2: मेरा एक फ्रेंड था अभिषेक मेहता, वो एक दूसरे ब्लॉक से मेरे घर आता था सुबह, वो मेरे को. अच्छा. हम दोनों फिर जाते थे.
1: सही है.
2: तो वो दिन भी वो दिन थे यार.
1: मैं बहुत कमीना टाइप का भी था, मैं लूल था लेकिन मैं कमीना भी हो गया था. मेरा एक दोस्त
2: हो गए थे मतलब अब तो.
1: well,
2: भी so, थोड़े थोड़े से
1: कमीने. हाँ नहीं, तब मैं हो गया था, तब मैं होना स्टार्ट हो गया था शायद, क्योंकि तो शुरू में सेक्शन से आपके 10th क्लास तक, तो जो सेम सेक्शन में आप वही कैरी फॉरवर्ड आगे करते जा रहे, तो वही आपके दोस्त हैं जो भी हैं. दूसरे सेक्शन वालों के से आपका मतलब नहीं, एटलीस्ट मेरा मतलब नहीं था, मुझे नहीं था दोस्ती वोस्ती.
2: पर हमारे कुछ क्लासेस होती थी जो दूसरे सेक्शन वालों के साथ लगते थे सब्जेक्ट से.
1: अच्छा.
2: लाइक कृषि विज्ञान होता था, एनिमल हस्बेंड्री, 9th क्लास में मुझे याद है.
1: अच्छा.
2: तो मेरा ये सेक्शन था और उसमें जब क्लास लगती थी वो सारे सेक्शन जिस जिसने वो सब्जेक्ट लिया हुआ था तो उस सब्जेक्ट के सारे, तभी ऑलमोस्ट सभी सेक्शन वाले जाते थे.
1: हाँ, मेरा ऐसा नहीं था क्योंकि हमारे ऐसा वो नहीं था इलेक्टिव कि आपको कुछ चुन सकते हो.
2: बड़े शहर सर, बड़े शहर.
1: अरे बड़े तो नहीं, ठीक ठाक शहर था. एनीवेज,
2: तो जहाँ से प्रियंका चोपड़ा आती है बड़ा शहर ही है.
1: तो 11th क्लास के अंदर जब गए तो ठीक है, तो सारे सेक्शन मर्ज हो गए, जिन्होंने साइंस ली या जिन्होंने आर्ट्स ली तो वो सारे मिल गए. तो मुझे पता चला कि एक और बच्चा है जो मेरे रोड लाइक जो मेरे घर से आधे ही रहता है सड़क, लाइक सेम रूट पे ही है. तो मैंने कहा ठीक है, हम दोनों साथ जाया करेंगे. ठीक है, मुझे वो पसंद नहीं था इतना.
2: एक ही साइकिल पे?
1: नहीं, एक साइकिल पे जा सकेंगे भैया, मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी.
2: अच्छा.
1: तो लेकिन मुझे पसंद नहीं था, और उसकी साइकिल डिफरेंट थी. लाइक वो जो आती थी बिल्कुल ब्लैक कलर की और सीधे उसके वो होते थे
2: रेंजर साइकिल, उस पे भी एक बात है मैं बताऊंगा आपको.
1: हाँ, लेकिन वो भारी होती थी, वो होती थी प्रॉपर लाइक यू नो लाइक रॉ.
2: हमारे टाइम में रेंजर साइकिल आई थी वो.
1: अच्छा.
2: सीधे हैंडल वाली.
1: अच्छा.
2: तो जैसे मैं 9th में हुआ, मैंने पापा को कहा पापा मुझे ना वो रेंजर साइकिल दे दो सीधे हैंडल वाली.
1: अच्छा.
2: पापा ने दो लगाए मुझे, कहता बेटा हमने भी चलानी होती है, हम अच्छे लगेंगे वो चलाते. साइकिल तुझे वही मिलेगी एटलस की मुड़े हैंडल वाली.
1: हाँ, तो सीधे नहीं, वो मुड़े हैंडल की बात कर रहा हूँ, जो सिल्वर कलर के होते थे ना, ब्लैक कलर फ्रेम है जो बड़े लोग चलाते थे मेनली. दैट वाज द मोड ऑफ कम्यूट मोस्ट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल,
2: बड़े बड़े लोग चलाते थे.
1: हाँ, वो तो उसने कई बार मुझसे कहा होगा कि तू अपनी साइकिल लेते. मेरी साइकिल से दीदी की थी, वो अच्छी सी थी, ब्लू बर्ड या ब्लैक बर्ड जाने क्या कौन सी आती थी. तो मैं नहीं देता था, मैं नहीं यार मुझसे वो चलती नहीं है, नॉलेज कहना
2: थी. अच्छा, आपकी वो साइकिल थी क्या जो उसको लेडी साइकिल भी बोलते
1: थे? लेडी बर्ड थी, लेडी बर्ड.
2: हाँ ना. हाँ.
1: तो मैं उसे नहीं देता था, भड़े. उसके बाद एक दिन मैं पहुंचा 6-7 महीने बाद हो गया, उसके पास बड़ी फैंसी साइकिल है जो यहाँ की होती है ना रोड बाइक जिसके मुड़े हुए होते हैं वो.
2: हाँ, नीचे से
1: बिल्कुल रेसिंग वाली बाइक, वैसी बाइक है, उसके अंदर गियर है. मैं कहा भाई ये क्या है?
2: फिर आप मांगते
1: ये दे रहा, ये मैं चलाऊंगा. और उसके बाद ऑलमोस्ट जितने बाकी दिन थे हम साथ में गए, उसकी साइकिल मैंने ही चलाई है. फिर
2: तो आपका बेस्ट फ्रेंड हो गया होगा, आपको अच्छा भी लगने लग गया होगा.
1: तब भी नहीं, उसकी दोस्ती यारी वहीं तक थी मेरी. उसका जैसे क्लास में पहुंचे, तू जा उधर कोने बैठ, मैं यहाँ पे बैठा.
2: उसका नाम बता दो क्या था, वो भी यहीं कहीं हो आप.
1: नाम तो याद है लेकिन बोलूंगा नहीं. वेल, आई थिंक टाइम हो रहा है हमारा, हमने बहुत सारी बातें करी आज. एंड मोंटी साहब का शो आने वाला है, इस सैटरडे से आने वाला है.
2: नहीं, अभी हम 2-3 हफ्ते लेंगे उसके लिए, प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए.
1: प्रॉपर प्रिपरेशन.
2: तो मोंटी मेरा निक नाम है, समंदर का शो होगा वो, समंदर से गुफ्तगू.
1: क्या बात है.
2: तो मेरा पेन नेम है समंदर.
1: हाँ जी.
2: तो समंदर के नाम से लिखता हूँ और बहुत से लोग मुझे शायद जानते होंगे जो लिटरेचर से जुड़े हुए हैं, थिएटर खूब करते हैं हम, कवि गोष्ठी खूब करते हैं
1: जी।
2: तो उम्मीद है, ढूंढ रहा हूँ ऐसे और लोग बहुत जुड़ेंगे मिलेंगे और यहाँ नॉर्थ कैरोलिना का बड़ा ग्रुप हम बना सकें। मुझे पक्का विश्वास है हमारे आरटीपी एरिया में बहुत लोग लिखते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं।
1: बिल्कुल, अगर आप मिल गए तो हमें मिल ही जाएंगे।
2: नहीं, आपके शो के माध्यम से हमने ये अपील की है लोगों से
1: जी।
2: आप बताइए, मैसेज कीजिए, आपको आपको क्या फीलिंग आ रही है अभी? अभी अभी हमने शो शुरू नहीं किया, अगर आप कहेंगे तो शुरू करेंगे, अगर आपको लगता है भी नहीं क्या शेयर शायरी कौन करेगा,
1: कौन फोन करेगा, शो खत्म होने वाला है। मुझे लगा तारीफ करने वाले थे आप मेरे शो की, कि मेरे शो के माध्यम से हमने ढूंढे हीरे।
2: तारीफ करता अगर आप चाय पिलाते हैं, आपके दो घंटे हो गए मुझे चाय नहीं पिलाई किसी ने,
1: या चाय पीता नहीं, और चाय मुझे ही नहीं मिलती तो आपको कहां से पिलाऊंगा मैं।
2: चलिए जो कबाट चाय हम इसके बाद पियेंगे।
1: ठीक है, बढ़िया। तो दोस्तों बने रहिए, पता नहीं हाँ एनीवेज, तो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। शो हमारे बढ़ते जा रहे हैं लाइव, सैटरडे को दो तीन हफ्ते में एक आएगा समंदर से गुफ्तगू, सुनिएगा जरूर। और कल वैष्णवी का शो है जो आप स्किप कर सकते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं होता है। नहीं नहीं यार, बहुत बिल्कुल सुनिएगा, बहुत अच्छा शो होता है, मैं तो सुनता हूँ यार, मुझे बड़ा मजा आता है इसकी बातें सुनने में। और उसके बाद ज्योति का शो आएगा सैटरडे फ्राइडे को, उसके बाद ट्यूजडे को प्राची शो करती हैं। तो भाई आप बने रहिए, गाने सुनते रहिए। एंडिंग मैं बहुत ख़राब कर रहा हूँ, बट दैट्स ओके, आई होप कि मैंने बीच में बातें अच्छी करी हों जो आपको अच्छी लग गई हो। तो मैं निकलता हूँ क्योंकि मुझे लग रही है भूख। आप लोग सुनिए गाने और हम मिलेंगे अगले हफ्ते। बाय बाय।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: You're listening to WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी. आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड मैं हूं सबके दिलों का चिराग. मेरा नाम है आरजे पराग. 7 से 10 में रहता हूं आपके साथ, मिटाता हूं आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूं आपके मूड को रिफ्रेश. आज है 12 अगस्त, वेनसडे यानी हम्प डे आज आ गया, जिसका बहुत सारे लोग बेसब्री से वीकेंड से भी ज़्यादा इंतज़ार करते हैं. कैसे आप सब लोग एंड कैसे चल रही है आपकी शाम. आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड मैं हूँ सबके दिलों का चिराग. 7 से 10 रहता हूँ आपके साथ. मेरा नाम है पराग एंड मिटाता हूँ मैं आपका स्ट्रेस, बनाता हूँ आपके मूड को रिफ्रेश. शुरुआत करते हैं पहली खबर जो आ रही है ट्रायंगल एरिया से, ट्रायंगल के आम लोगों की जेब से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर. ड्यूक एनर्जी द्वारा बिजली की दरों में भारी बढ़ोतरी के प्रस्ताव को लेकर आज स्टेट यूटिलिटीज कमीशन में गवाहों और एक्सपर्ट की आखिरी दौर की सुनवाई चल रही है. अगर इस रेट हाई को मंजूरी मिल जाती है तो आने वाले जनवरी से आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है. आज की इस सुनवाई पर पूरे ट्रायंगल एरिया के उपभोक्ताओं की नज़रें टिकी हुई है कि प्रशासन उन्हें राहत देता है या बिजली का झटका. जैसे ही मुझे अपडेट मिलती है मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगा. फिलहाल एंजॉय करते हैं पहला ये गाना.

0: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna & Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 karat gold and 18 karat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest free financing available. Come see us for all your jewelry needs at Khanna & Sons Jewelers in Cary, North Carolina, or call us at 919-388-3838.
1: Shopping for your next car? LeafCars.com puts everything in one place so you can search, compare, and buy with confidence. Choose from thousands of new and used vehicles backed by our trusted network of local dealerships with expert service, convenient locations, and flexible buying options. LeafCars.com makes the entire process simple. Start online and drive home with peace of mind. LeafCars.com.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरी डे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज.

वेल एंजॉय किया आपने ये गाना, गाना था वाकई में काफी बेहतरीन। आप सुन रहे हैं रेडियो नैरो पर निर्वाणा नाइट्स, एंड अगर आप पानी के इस्तेमाल को लेकर परेशान हैं तो आज आपके लिए एक मिली जुली खबर है। सूखे के हालातों को देखते हुए रैली शहर ने अपने नागरिकों के लिए पानी के इस्तेमाल पर लगी पाबंदियों को हटा दिया है, लेकिन डरहम और चैथम काउंटियों में रहने वाले लोगों को अभी भी सावधान रहना होगा क्योंकि वहाँ पानी की जो कमी है वो जारी है, एंड उसकी वजह से सख्त नियम और पाबंदियाँ आज भी लागू रहेंगी। प्रशासन ने अपील की है कि पानी को संभाल कर खर्च करें। मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि पानी का जो यूज़ है वो कम मात्रा में करना चाहिए, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे पानी का यूज़ करना चाहिए। इसलिए पानी को संभाल कर खर्च कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कंडीशन और भी ख़राब हो सकती है, ऐसा प्रशासन ने कहा है। इसलिए सोच समझ कर ये पानी का यूज़ आप कीजिए। सुनते हैं

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

सुन रहे हैं रेडियो नायरा पटरी वन नाइट्स एंड मैं हूं सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरजे बराग, 7 से 10 में रहता हूं आपके साथ, मिटाता हूं आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूं आपके मूड को रिफ्रेश। कैसे चल रही है आपकी आज की वेनसडे की शाम? एंड डरम शहर की सुरक्षा को लेकर आज एक नया अध्याय शुरू हो गया है। ग्रीन्सबोरो से आई तेज तर्रार ऑफिसर जो है मर्डीज जिनका नाम है, को कल ही आधिकारिक तौर पर डरहम की नई पुलिस प्रमुख घोषित किया गया है। मर्डीज आज से अपने नए जो भी रणनीतियां हैं उनको शुरुआत उनके बारे में शुरुआत करने जा रहे हैं। शहर में बढ़ते गन वायलेंस को रोकना और युवाओं की सुरक्षा उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहेगी, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये काफ़ी अच्छा है एंड उनकी जो भी योजनाएं हैं उनके ऊपर आज से ही काम शुरू होने वाला है एंड सब कुछ अच्छा होने वाला है। एंजॉय करते हैं अगला एक गाना, बने रहिएगा रेडियो नायरा।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर नाइट्स एंड मैं हूं सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग। 7 से 10 में रहता हूं आपके साथ, मिजाता हूं आपका स्ट्रेस, बनाता हूं आपकी मूड को रिफ्रेश। कैसे चल रही है आपकी वेनेसडे की इवनिंग? एंड आज मौसम कैसा है ये बताने जाऊंगा आपको। तो मौसम की बात करें तो आज दोपहर का तापमान 90 से 95 डिग्री फॉरेनहाइट के आसपास रहेगा, लेकिन कल के मुकाबले आज आंधी तूफान की आशंका कम है। इसके अलावा आज 12 अगस्त दुनिया के कई हिस्सों में पूर्ण सूर्य ग्रहण, दैट इज टोटल सोलर स्लिप देखा जा रहा है। एंड हमारे नॉर्थ कैरोलिना में इसका सिर्फ 1.8% हिस्सा, यानी बहुत ही मामूली आंशिक ग्रहण जो है वो देखने मिलेगा, वो भी केवल आउटर बॉक्स के इलाकों में दोपहर 2 बजे के करीब। इसलिए सीधे धूप देखने से बचे, अगर आपके पास गॉगल है तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। ग्रहण को देखते नहीं है खुली आँखों से, मतलब यू नीड टू वियर समथिंग। ओके, एंजॉय करने जा रहा हूँ एंड सुनाने जा रहा हूँ आपको ये अगला गाना। बने रहिएगा रेडियो नायरा पर पक्का।

अपनी वन ऑफ नाइट जर्न में हूँ सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है आरजे पराग, सात से दस में रहता हूँ आपके साथ, मिट जाता हूँ आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूँ आपके मूड को रिफ्रेश। अगस्त का आधा महीना करीब आ गया है और हमारे ट्रायंगल एरिया के जो स्कूल है उनमें अब रौनक लौटने वाली है। वैक काउंटी और धरम पब्लिक स्कूलों में नए एकेडमिक सेशन की तैयारियाँ अब अपने आखिरी चरण में है। आज से कई स्कूलों में टीचर और स्टाफ के लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं, पेरेंट्स ध्यान दें। इस बार बसों के रूट्स और टाइमिंग्स में कुछ बदलाव किए गए हैं जिसके लिए स्कूलों की ऑफिशियल वेबसाइट पर आज ही लाइव कर दी है। साथ ही अगले हफ्ते से स्कूल जोन में स्पीड लिमिट की कड़ाई से जो है वो निगरानी की जाएगी, तो गाड़ी चलाते समय स्कूल बसों और बच्चों का खास ख्याल आपको रखना है। एंड जैसे स्कूल शुरू होती है तो पेरेंट्स की भाग दौड़ भी बच्चों के पीछे चालू हो जाती है, इसीलिए आपकी भी छुट्टियाँ ख़त्म और बच्चों की भी छुट्टियाँ जो है वो ख़त्म हो चुकी है। एंजॉय करते हैं फिलहाल अगला एक गाना, क्योंकि मैं मिटाता हूँ आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूँ आपके मूड को रिफ्रेश। बने रहेगा रेडियो।